0: गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उठी जिंदगी शुरू हो चुकी है, मैं अपनी गलत गाय भी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो करोड़ ने वह भी जान के सरकार भी गिरूगी सारा कुछ।
1: देखो इसमें तो पहले मैंने आपको बता दिया है, अकाली दल की तो अभी आई, हमने तो दो दिन पहले बोल दिया था, मेरे घर परसों दिल्ली में प्रेस वाले आपके मिले थे, उनको भी मैंने बता दिया था कि पुठी गिनती नहीं, उनकी गिनती खत्म हो गई। आप तो मुख्यमंत्री साहब सब कुछ करेंगे, जो नहीं भी होना चाहिए वो भी होगा, और ये एमएलए फिर भी नहीं रुकेंगे, अरोड़ा नहीं कई अरोड़ा है जो जाएंगे।
0: इसमें कहा गया है कि पुलिस के दबाव और विजिलेंस के दबाव के चलते ही 65 लोग,
1: आप ना पुलिस का दबाव है, 6 महीने में कोई ऑफिसर इनकी नहीं सुने।
2: अमर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स। ट्रकिंग इंडस्ट्री विच 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मोंट्रियाल, जीटीए ते ओंटारियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
3: Best Bargain Carpets and Flooring सिर्फ एक ना ही नहीं सच्ची Best Bargain है।
4: Best Bargain थी मिलते ने brand name carpets, hardwood, vinyl अते laminate floors bargain prices थे।
3: साड़े स्टोर ते आके आप selection देखो या अपने घर बैठ के choose करो।
4: लाजवाब quality, top class service, Best Bargain तो बेहतर कोई नहीं।
3: We also service hotels, motels, banquets and high-rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.

आओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा कियां वड्याइयां। तुध विण सिद्धि

जम की फांसी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ ते आया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शतरण को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब दकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आपे अपनी बोझ उचारै, तुम सब ही तेरै तनिरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

हर हो। हरि दुसिद करमो सब होई, दुष्ट शाश्वत सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर ना

लालच छोड़ रचो अपरंपर, इउं पाव मुक्त द्वारा है। लालच छड़ के, लोभ छड़ के, दुनिया दी ममता त्याग के, अपरंपर जो परे तो परे वैगुरु है, ओदे चरणा विच रच जाओ, ओदे नाल जुड़ो, ओदे नाल रुचि पैदा करो। इस तरह मुक्ति दा दरवाजा खुल जांदा है। महाराज कहिंदे हन, जिस बिसरिया जम जोहन लागै। जिस वैगुरु नू भुलण दे नाल जम ताक रखन लग पैंदे, भाव जम उस बंदे दे आले दुआले बहिंदे रहिंदे वी कदों पाईए दे गल विच संगल ते इहदा लाईए फांटा टका के, इह बड़ा मनमुख है। उहदे जे नाम चेते विच रहे तां जम नहीं वेख सकदे। सब सुख जाहें दुखां फोने आगै। इस तरह सारे सुख जांदे रहिंदे हन ते अगे होर दुख पैदा हो जांदे हन नाम नू भुला के। राम नाम जप गुरमुख जीवड़े, एहो परम तत् विचारा है। हे गुरमुख जीवड़े, हे गुरु के सिखा, तू वैगुरु दा नाम जपया कर, ये सब तो वड्डा तत् दी गल है। विचार कीती है गुरु साहब जी ने, हर हर नाम जपो रस मीठा। महाराज कहिंदे हरी दा नाम जपो, सरसना दे उत्ते शरीर दे विच रोम रोम दे विच मिठा रस आउण लग पैगा। गुरमुख हर रस अंतर डीठा। गुरसिखां ने, गुरमुखां ने अंतरमुखी हो के सुरत शब्द का अभ्यास किया और हरी दे रस नूं अंदरों माणिया वेख्या है। अहनिस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संयम सारा है। दिन रात वाहिगुरु दे प्यार विच ते उहदी हजूरी विच रहो, ये श्रेष्ठ जप तप है सारिआं तों। जप तप क्यों करना है? क्योंकि हजूरी विच रहिण लई इक उह साधन है। असल विच तां हजूरी विच ही रहिणा, गुरु के सिख ने इही उहदा इक कारज है सब तों वड्डा। पर हजूरी विच इस तरह रहा नहीं जांदा सोचण दे नाल, जिन्ना चिर जप अभ्यास नहीं करदा। तां इह श्रेष्ठ है जप तप ते रहत आदिक है। राम नाम गुर बचनी बोलो, गुरु दे बचना दे राही राम बोलो। जिवें पंज प्यारिआं नूं सिख नूं कहा वी कहो वाहिगुरु, गुरु साहिब ने गुरमंत्र मूल मंत्र दृढ़ाया, उह गुरु दे बचना दे अनुसार है। संत सभा मह इह रस ढोलो, गुरमुखां संतां दी सभा दे विच संगत विच इस रस दी खोज करो जो शरीर दे अंदर ही है। गुरमत खोज लहो घर अपना, बहुड़ ना गर्भ मझारा है। गुरु दी मत दे अनुसार चल के अपने असली घर गुर शब्द दे सिंघासन नूं खोज लो, लभ लो, परत के, तां कि जन्मां मरणा दे विच कई गर्भां दे विच ना सड़ना पए। परत के सच तीर्थ नावो, हर गुण गावो। वैगुरु दे गुण गाओ, उहदी उस्तत करो, यही सच्चा तीर्थ है, इहदे ते इशनान करो। तत् विचारो हर लिव लावो, तत् दी विचार करके हरी दे चरणा नाल लिव जोड़ लो गुरु शब्द द्वारा। अंत काल जम जोहे ना साकै, हर बोलो हो राम प्यारा है। अखीर दे वेले फिर जम जिहड़े ने उह वेख भी नहीं सकते गुरु के सिखां वल, उह मुक्त हो जांदे। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब जी दे घर विच जांदे हन, कलगीधर पातशाह दे चरणां विच पहुंचते हन ऐसे गुरमुख। इस करके वाहिगुरु नूं प्यारा समझ के हरी दा नाम बोलो, जपो। सतगुर पुरख दाता वडनाणा, पूरे सतगुरु जी वड्डे पुरख महापुरख हन और वड्डे सियाणे हन, दाता देण वाले हन। जिस अंतर साच सो शब्द समाणा, सच्चे नाम दे नाल मोह है, प्रीत है, वो ही शब्द दे विच नाम दे विच उहदी सुरती समा जांदी है। जिस को सतगुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम भै पारा है। जिन्हों त्रुट के कृपा करके सतगुरु जी मेल लेंदे हन, अपने चरणा दे नाल जोड़ लेंदे हन। महाराज गरीब नवाज जी कहिंदे, उहदे जमा दा भय दूर हो जांदा है और मुक्त

0: दे प्लीज प्लीज बैठो, बोलन भी दे देंगे जी, बैठो, मैंने मता पेश कर लें दो, मता पेश कर लें दो जी। सीएम साहब,
1: स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मान योग लोग आते हैं, इत्थे अफसर बैठे ने, ओ सारे गैलरियां जिहड़ियां ने उहदे विच बकायदा पहलां दस्सिया जांदा है कि लाते लाते नहीं करदी, बैठन रहे, बिल्कुल हिलना नहीं, बस ऐ रहना। तो सर इत्थे इत्थे इत्थे ते उन्हां नूं कहा कहा गया तो उन्होंने उन्हें ठीक कर ली। वह तो मैंबर नहीं, वह मैंबर नहीं हैगी, मैंबर नहीं हैगी। तू तो मेरी बेटी बारे भी बोली जाना, तेरा की है यार, तू रहन दे ना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा यार।
0: आ गई सर गल,
1: इलाज कराओ जी, इहदा विधानसभा दे खर्चे दे इलाज कराओ। इहदा
2: जो राष्ट्रपति साहब को मिलने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है जी डरा हुआ चीफ मिनिस्टर है। अगर हमारे पास पूरा सामान है, अगर प्रेसिडेंट साहब का टाइम वेस्ट करना है कि हमारे आदमी भागे, हमारे आदमी भागे जी, रोने के लिए नहीं जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। अगर 1/3 मेंबर चले जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं किसी पार्टी में, वहाँ उसके बाद कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। आदमी चलेगी, आप 4 आदमी हो, 5 आदमी की पार्टी है, 4 चले जाएंगे तो ये क्या करेगा, किसका किसका फॉल्ट है? इनका फॉल्ट है जिन्होंने उस टाइम उन लोगों को टिकट नहीं दी जो पंजाब के लिए बात करना चाहते थे। अब यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो नहीं किया, ये नहीं किया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आंखें दिखाने चले गए, ये तो उनकी इंटरनल बात थी, पैसे का लेन देन था, वो नहीं हुआ पूरा, तो इसके लिए वो भागे के चलो पैसे तो लेकर जाओ।
3: स्पेशल सेशन भी बुला रहे हैं,
2: स्पेशल सेशन में आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि इनकी जो आ रही है लेबर डे, लेबर डे की बजाय ये जो इनके अपने MLA हैं उनको भागने का खतरा है, उसके लिए फ्लोर पर ये कॉन्फिडेंस का मोशन लेकर आएंगे।
3: तो लगता है कि कॉन्फिडेंस आगे भी चल पाएगा,
2: जब जैसे जैसे 7 भागे तो ऐसे जब भागने लगे तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे MLA डरे हुए हैं, जैसे पंजाब के लोग डायरेक्ट इनको क्वेश्चन करने लगे हैं, आपने देखा कि कितने MLO को घेर कर बातें करते हैं, प्रेजिडेंट रूल पंजाब में लगेगा। मुझे तो मैंने बोल दिया कि लगेगा, जब तक मेरे पास वो, जब मैं पंडित बन जाऊंगा ना, वही खाता देखने वाला, फिर मैं बताऊंगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, जिस आदमी के साथ रिलेशन या उसको रिलेट किया जा रहा है, पंजाब के DGP साहब ने किया है, उसमें क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर है और पंजाब का भी जो फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलिस स्टेशन में आदमी है तो उनको ये पता ही नहीं चला कि कौन चला रहा है बात। एक आदमी को कस्टडी में रखा है तो उसको प्रौणा बनाकर रखा है, गेस्ट बनाकर रखा है कि उसकी इंटरोगेशन हो रही है। पहले तो GC के ऊपर सवाल ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क आ गया कि आदमी अंदर बैठा है, पुलिस की कस्टडी में बैठा है, बाहर उसका आदमी वो कर रहा है, ID लगा रहा है, तो वो जो है ये सीरियस मैटर है। इसके ऊपर बहुत चीफ मिनिस्टर को इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आज तक अपने जो CM है वो अपनी कुर्सी बिछाने में लगा हुआ है, उसने जो हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस की मीटिंग भी नहीं बुलाई, SSP इमीडिएटली बुलाना चाहिए थे। और जैसे रेड अलर्ट जो जारी हुआ है उसके ऊपर जो पंजाब का होम मिनिस्टर है वही गुम है, तो नीचे क्या बनेगा? नहीं, वो तो हमारे प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, 3 स्टेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, तो इसी महीने राजस्थान और स्टेट्स की भी, अजमेर में।

0: नहीं है, फिर भी नहीं बोलते हम अन्याय के खिलाफ, और उल्टा हम जो वर्किंग क्लास का है उसके ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं। तो ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ये वापस लो। अभी वर्किंग क्लास सड़क पे आएगी, जिस तरह किसानों ने किया था। अभी मैं आज इंटरनेशनल वर्कर्स डे पे मैं सबको कहता हूँ कि अभी हमें ये लड़ाई है सड़कों में लड़नी पड़ेगी।
1: देखो, सबसे पहले मैं आज कौमांतरी मजदूर दिवस है, सो मेहनत कश मजदूर भरावों नूं मैं बधाई दिना। पर बहुत वड्डा तुहाडा जिहड़ा सवाल है कि अज दे दिन ते आज के दिन पर ही बीजेपी सिलेंडर महंगा कर रही है। पूरा देश, वो मेहनत कश लोग हैं जो जिनके वजह से देश में तरक्की हो रही है, देश में व्यापार चल रहा है, देश में बिजनेस बढ़ रहा है, वो है मेहनत कश लोगों की वजह से जो अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी साइड बीजेपी सरकार और सिलेंडर 3,000 से ऊपर ले जा रही है कि ये मेहनत कश लोगों का क्या क्या हल करने जा रही है। ये उनको आज मुबारकबाद दे रहे हैं ये सिलेंडर महंगा करके। सो बीजेपी को सीधा सीधा ये दिख रहा है कि पंजाब नहीं, पूरे देश को उन्होंने लूटना है, देश को बर्बाद करना है। ये मोदी जी की चाल है, किसी को किसी भी तरीके पर ये अपने साथियों को फायदा देते हैं और देश को जो नीचे लाने की कोशिश करते हैं।
2: अपने देश की निर्माणता, देश को बनाने में मजदूरों का बहुत बड़ा हिस्सा, और आज मजदूर दिवस है। मैं सारे ही दुनिया के मजदूरों सिर झुका के प्रणाम करता, उन्होंने अपने वालों लख लख मुबारक। परमात्मा सब एक किरत कामिया हमेशा लिए तंदुरुस्तियां बख्शे, जिन्होंने साढ़े देश लिए साढ़े लोगों लिए बहुत वड्डा योगदान पाया। दूसरी, अज मजदूर दिवस है, पर नाल दी नाल जिवें तुसी भी कह रहे हो, सारे लोग इस गल ते चर्चा कर रहे हैं भी एल पी दियां जिहड़ियां कमर्शियल दी ओ 900 रुपए तो वध उहदा होर रेट जिहड़ा 2100 वाला सी 3000 तो उपर कर दिता गया, जो बहुत वड्डा सारे लोगों ते भार पैना है। इहदे नाल वड्डा नुकसान जिहड़ा जनता दा, कुछ लोगों नूं इहदा फायदा मिलना, कुछ कंपनियां नूं फायदा।
3: अमर ग्रुप हायर कर रहे हैं 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स। ट्रकिंग इंडस्ट्री में 25 साल तो वध एक्सपीरियंस और इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मॉन्ट्रियल, GTA ते ओंटेरियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
4: बेस्ट बार्गेन कारपेट्स एंड फ्लोरिंग सिर्फ एक ना ही नहीं सच्ची बेस्ट बार्गेन है।
5: बेस्ट बार्गेन ती मिलते ने ब्रांड नेम कारपेट्स, हार्डवुड, वाइनल अते लैमिनेट फ्लोर्स बार्गेन प्राइसेस ते।
4: साडे स्टोर ते आके आप सिलेक्शन देखो या अपने घर बैठ के चूज करो।
5: लाजवाब क्वालिटी, टॉप क्लास सर्विस, बेस्ट बार्गेन तो बेहतर कोई नहीं।
4: We also service hotels, motels, banquets and high-rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.
6: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
7: ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
8: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
6: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।
9: CWC Immigration is one of the largest immigration companies and they 4 offices in Canada ਚ ਨੇ ਤੇ 12 ਇੰਡੀਆ ਚ। ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੇਰਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ।
10: ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ CWC Immigration। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ CWC Immigration। 905-670 4444
11: ਹੁਣ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਵਿੰਚੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਚਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਸਰਵਿਸ